रेडियो मनाटा से 4.4 खर के तमाम सुनने वालों को आज रास खेकी की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियां, बहुत बहुत मुबारक हो।

सो जनाब गुड मॉर्निंग करेक, गुड मॉर्निंग टू मैन, गुड मॉर्निंग बनू, गुड मॉर्निंग लाखे, गुड मॉर्निंग ठान, गुड मॉर्निंग वजीरस्तान, गुड मॉर्निंग डीआई खान एंड गुड मॉर्निंग शकरदरा, गुड मॉर्निंग को हार्ट, गुड मॉर्निंग थल, सो ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड फाइनली गुड मॉर्निंग हैबर पख्तूनख्वा, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।

अरे दुन के बुवे छी दानन छोकरो गला छे ते रेडियो मन करे एक नए सबिने डुलुन प्ले करे दे बिल्कुल बहुत दुनो की सबिने डुलुन विशा

0: बैक टू बैक देखा सिलसिला जारी, 2 0 2 97 2 91 2 92। गौरव नेक्स्ट कलर, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: ना वालेकुम सलाम खदा से वैया का ना मरवा गोले। वालेकुम सलाम खदा से वैया छे छे सरंग जमे का। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम।
0: ना दा से वैया छे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
1: वालेकुम सलाम।
0: छोटी मरवा गले स्टडी माश स्टडी माश अख्तर दी दागा दारिया मारे डीर डीर मुबारक छे खतो शो हो बनावा। बैसो
1: का
0: मरवा गवल
1: बिल्कुल
0: ठीक ठाक खेमा खिट फाट यमा रोग यमा जोड़ यमा तब संगे
1: भाई मुंग।
0: अच्छा सही।

0: नेक्स्ट कॉल बगो रुचि मुस्तरा दिकाल ले लारे सोखती 0927291292। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम
0: व बरकातहु। हिकमतुल्लाह खान स्तड़ा माश इद अदा दरिया मारे डेरा डेरा मुबारक सा।
1: खैर मुबारक, खैर मुबारक।
0: दगाबो हिकमतुल्लाह खान वी हो का ना?
1: बिल्कुल।
0: सरंग सही बरोबर दाखो प्रोग्रामर सर वोर वे
1: प्रोग्राम है तो पहले प्रस्ताव को खुश तो जरूरी शो खेब ना।
0: अच्छा खेब नरवीश है तो जाए दाखो चुकरो माँ
1: खुश
0: मान जरदास मशीर सड़ाई दे मैनेजर भी कहना या सीनियर भी ब्याह बल्लश के मतलब तो पता ही भी मशीर भी खुदा को मुझे ठोल दासी बस अमजूले अमजूले यू कहना नो डेरा मजाक है टीम वर्क चेगा डेरा मजाक सही ओके जी तो दास चल वे मशूब गलाय का दुआ सलाम ईद मुबारक है। अच्छा ठीक ठीक ठीक ईद दतवेरे से क्षेत्र खबर है मनोज से खबर है मनोज थैंक यू सो वेरी मच फॉर कॉलिंग खुशोल से और जाना।

0: नेक्स्ट वाइज चीमी क्यूट रिशिखान स्वीट भाई जानी दिल की गहराई से तारिक भाई एंड एमएसडी भाई को भी ईद की थर्ड डे बहुत बहुत मुबारक हो जी हेर मुबारक एंड थैंक यू सो वेरी मच। वो नेक्स्ट मेक यू ट्रू शिहान स्वीट भाई जानी वाह जी वाह छोटी सुनहरी को ईद की थर्ड डे बहुत बहुत मुबारक हो। बिल्कुल छोटी सुनहरी प्रोग्राम और भी तो से ईद मुबारक थैंक यू सो वेरी मच। गुरु बनेस कलर चीमी सना दे काली लारी सुख दी जी हाँ अस्सलाम वालेकुम जी जनाब थैंक यू सो वेरी मच। सुगुरु से खबर की किम से ना अच्छा सनम प्रोग्राम के वेलकम हर कल सनम सरंगी तो शादो जी बिल्कुल ठीक ठाक सनम दाबरो तो वैची ईद वेरी से सरंगी तेरे लिए और ईद नन थर्ड डे चिदा यो हो पहला पहला साल के डेट मुबारक शाह और सब प्लान मुदा चिदे चक्कर ते पके सही का ना
1: मुबारक
0: भाई जाना सबो तो बदरूम नन होने तो अच्छा सही महमूद ओके जी तो से मामूल तक है ना डेढ़ वेलकम स्टडी माशी भी आयुष हाँ जी तो से कर गली दी जी जी हेलो हेलो ओके जी वंस अगेन ट्राई कवर है 0927-291-292 दिला रहे सी नेक्स्ट कॉलर ऑफ द शो अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी मुझसे सो खबर कई किम से ना आबेदुल्ला जी आबेद भाई तो प्रोग्राम के हर कल वेलकम मुबारक शाह
2: मुबारक शाह
0: यो जहान मनना शुक्रिया इज्जतमान से जी वालेकुम अस्सलाम एंड हेर मुबारक खबर दला था प्रोग्राम वेगा
2: मुझे
0: 12 बजे यो जहान मनना दाखा से बस अगा तो से मिश्र डेरा डेरा मीना लड़ाई अखबल फैमिली चैनल से मीना लड़ाई यो जहान मनना बस दाखो मुझे कले कले यो जयकेजू मो ख्याल की जेपो वड़ी की ईद के मोह इकट्ठा शो कड़े हुआ दामो बस्तरीद के ब्याह इकट्ठे वगैरह मख्त पता नहीं लगी कना दासी कले कले
2: मुझे
0: यही कटे कटे कले मुझे कले दासी खुशाई मुकावी दागा से ईद शपे रेजी भी बल से दासी मुकावी भी मुझे कटा रसू
2: बिल्कुल सही खबर है तो
0: जी जी अच्छा दाबर तो वे ची ईद मुका के खपल चेता रिश्तेदारों कर लोड़िए ईद मुबारक कहे था
2: इंशाल्लाह
0: देर छ देर छ अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह बस तक से अख्तर मुके पकोल की योजल रुसी खाम हाख पलो रिश्तेदारों का रतल पिछार दी नन सब मुझा सोच वको रिश्ते वेले दुमरा वीक्ष वाले रिश्ते वेले दुमरा कमजोरिश वाले ची मिजा व बलता अगातलन रुतलन प्रेजद वोली थी
2: बिल्कुल
0: जी पखलूस सरा अगल रिश्तेदारों करा पो नियात सरा चुक बिमरून अगो पछताने कवल अगे सरा सरा बिल्कुल अगो था हाजिरी कवल यकीनी दाड़े रे खुशी खबर है जी जी खोचे खुलूस पके शामिल हुई जी कुर्बान दिकाल का बोलो यो जहान मैंने कवा नोरा और उनकी वहाँ काल के प्रोग्राम के शामिल हो दिकाल दे लारे और चाहता ईद मुबारक सलाम अच्छा तो हम फरमाइश वकड़ो आमीन सुम आमीन ओके जी सर ट्राई करो सही था प्रोग्राम सरावर वे फरमाइश हो पहला खश है प्रोग्राम सरावर वे जगोर ठीक है कार का बोलो जहान मना थैंक यू आबेद भाई शुक्रिया राकी बो बस थोड़ा डेरू शाह

सो मौसम बदल गए, जमाने बदल गए, लम्हों में दोस्त बरसों पुराने बदल गए। दिन भर रहे जो मेरी मोहब्बत की चाव में, वो लोग डूब डलते ही ठिकाने बदल गए। कल जिनके लफ्ज लफ्ज में चाहत थी प्यार था, लो आज उन लबों के तराने बदल गए। एक शख्स क्या गया मेरा शहर छोड़कर, जीने के सारे ढंग पुराने बदल गए। अब वो न रहा, मैं न रहा, सारे ही जिंदगी के फसाने बदल गए। सो बिल्कुल रेडियो अमल के रखे उर्दू के जितने भी यानी कि लेसनर उर्दू से बिल्कुल जी मीना मोहब्बत रखने वाले वो लेसनर, उनके लिए जी कुछ अल्फाज, उन सबको भी बिल्कुल ईद उल अजहा का थर्ड डे बहुत बहुत मुबारक हो। झुक झुक जियो, खुश रहो, हमारे संग रहो।

जी शामिल करते हैं कुछ SMS। नेक्स्ट SMS किसने किया जी? जी मैं क्यूटर शिहान स्वीट भाई जाने दिल की गहराई से और किसी ये शामिल हुआ था।

नेक्स्ट में क्यूट रिहान स्वीट भाई जानी स्पेशल फॉर यू, कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, पर सारे का सारा कैसे हो सकता है जब तुमसे मिलकर उदासी कम नहीं होती, तो सोच तेरे बगैर गुजारा कैसे हो सकता है। डेर अक्षली पोएट्री क्यूट रिहान, थैंक यू सो वेरी मच। मैं क्यों खान स्वीट बजाने और दो जल अख्तर के मिशन मामू वाल कोर पोते जकायदा दुमरा डे टाइम बाद में बाबा जी अच्छा मींदा लेदा ओके जी भैया मामू।

बेचारती से गातो से करे रोशी सा सदा नवियां जितो से सिर्फ लौट जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग मामू के हाथ चले जाए, मामू लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच आस मसी वेलकम। अच्छा ओके जी वाई कहना है वेलकम बेवफा रोशी खान साहिब रकीब हडे के मालिक सिंह जी ना राज भाई।

ओके जी, आई शेन जरा वन सराय गंबेला से बिल्कुल वंस अगेन वही जी सब सिस्टर को सलाम और थारे के मिस जी ब्रो को भी स्पेशल सलाम जी वालेकुम सलाम आयशा इंतजारा सराय गंबेला ना थैंक यू सो वेरी मच. नेक्स्ट वही जी मिक्रो टू जहां स्वीट भाईजानी बस अल्लाह आपको खुश रखे. ओके जी हम जा रहे हैं. ओके स्वीट भाईजानी गुड लक एंड गुड डे. थैंक यू सो वेरी मच. सेम टू यू वैसे मैं क्यूट रही. हाँ स्वीट भाई जानी वेलकम वफादार. अच्छा आसमा सीब को एंड ईद मुबारक. ओके स्वीट भाई जानी ओके गुड डे एंड गुड लाइफ. थैंक यू सो वेरी मच. ये तो सिटोल इस तरह

हवा में है खुशबू ईद की, दिलों में मोहब्बत है अपनों की और लबों पर दुआ है आप सबके लिए। मैं हूँ तारिक अजीज, तमाम सुनने वालों को बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक।

हवा में है खुशबू ईद की, दिलों में मोहब्बत है अपनों की और लबों पर दुआ है आप सब के लिए। मैं हूँ तारिक अजीज, तमाम सुनने वालों को बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक।

दोस्तों बिल्कुल चार शो रिकॉर्ड दो मुख्तलिफ जिन बने नाकाबंदी चुकम दे लगवली वा ओसो पर हम बिल्कुल नाकाबंदी लगवली दो से बिल्कुल जुनोन चुकम दी के ना आदत स्पीड ना याद है वन व्हीलिंग ना मतलब बच की नो माशाल्लाह डीजल करक कज खबर ओको करक की डीजल मतलब दासे वाकिया देर कम मखे तरोग लल चा एक्सीडेंट शो भी अमवाच भी नो बिल्कुल दाड़े रशा खबर दो दास बिल्कुल का बनो खबर हो कि बनो की दास एक अदो का वाकियात बिल्कुल माखे तरह गली भी हो बिल्कुल चिकल हाँ इंतजाम या शाचार के भी आओ बिल्कुल जरूर अप्रिशिएट के भी नमाशा डीपीओ करेक्ट चुकम दे दास बनो इंतजाम चुकमा दे या लकी मरवत नो डेरशा खबर दो छे मतलब दे अख्तर पदी वरुण के बिल्कुल रोतली दी आज कम जवनों दी मतलब आगा दो दस वाक्यात ना बचकवी चे आगा मतलब एक नुकसान भी दागे

0: बिल्कुल उरी दा संदरा खियाली जाना दे सॉन्ग नंबर 2000 सी
1: लिया हाल तेरा तो आया ओए चिप मैं जरगी दित तीर्ष वी दिना
0: बिल्कुल दे सॉन्ग नंबर 2000 सी चरते बना सही रेडियो मनी थियर पॉइंट फॉर कर सर
1: दा

जी अब्दुल बहार के लिए तुझे चले था बिल्कुल माधवी ऋषि सुबह पर तारीख और तुझे मुरमई गाना स्पेशल मैराथन ट्रांसमिशन ईद बहाले सरा खजी रखी पटक व्याई कहना चाहिए रखी पटक किया दम मलिक सिंह जी जेल चौक का रखना ईद उल अजहा था जे आपको बहुत बहुत मुबारक हो खैर मुबारक दीरो मनाना थैंक यू यो जहान मनन रखी पटक देने लवा व्यवय कहना चाहिए A person who deceives once can deceive 1,000 times to know that the sea is salty. You do not need to drink the entire ocean. Achcha sahi. Dera manana, thank you, Rakhi Pathak. Yo jahan manana. Ignoring is not a solution if you don't want to talk to me.

हवा में है खुशबू ईद की, दिलों में मोहब्बत है अपनों की और लबों पर दुआ है आप सबके लिए। मैं हूँ तारिक अजीज, तमाम सुनने वालों को बड़ी ईद की खुशियाँ, बहुत बहुत मुबारक।

0: It's 7 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
1: हवा में है खुशबू ईद की, दिलों में मोहब्बत है अपनों की और लबों पर दुआ है आप सबके लिए। मैं हूं तारिक अजीज, तमाम सुनने वालों को बड़ी ईद की खुशियां, बहुत बहुत मुबारक।

बिल्कुल जी, 0330 0344 717 डायल कई बलायो काल बुंद ऋषि तरह वक्त पर सार बुंद विष्टु ने बुंदे तेल वाला गवा खदे सार विष्टु दे वकी जी पसार न तम की जी दिसार विष्टु वश दवल यवल गणवल मजबूत अवल मस्त अवल गुड़ी नुखुजिफा कंपनी।

0: शाह जी, ओके जी, खुजीफा कंपनी शिफा शैम्पू डेरे खुशबुदारा शैम्पू जबरदस्त शैम्पू और देवस्तुन साफ हुई दे बदन साफ हुई दोले साफ हुई हाँ डेरा जबरदस्त देर तक अभी जरूरी इस्तेमाल की खुजीफा कंपनी शिफा शैम्पू। अस्सलाम वालेकुम। ओहो पावरे अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। देखो दस साल हूँ के कहना लगा दाइयो ने साड़ी सारा चे शेर डेरे पाई से भी कहना वोटे खाल के सालों को डेर खान को कहना दादे खाल के सालों मुतारट खान रुके जे दे तवई छे अस्सलाम वालेकुम सरंगे लगा तेर तवा का
1: अस्सलाम वालेकुम
0: पारिन खुवा लिसनर रो गली वाम दे तू ले डेरे ख्वाजे ख्वाजे खबर है वकड़े टोल खवातीन हजरत ना खाली खवातीन ता सलाम तू वाला कापी कड़ी चिदा उछा कड़ी तो सब आए
1: बाजार में चली
0: गई बड़ा
1: ही
0: बेदा पारिन चाहो वेलदार प्रोग्राम न दर वेदलाय चिरवेदलाय देवी चिरवेदलाय देदाई ब्याची दी मे तू वाला कापी कड़ी दो दा सुख तो दारू तो शायद तुख पला कापी न दो वेदले जका खुदर तभी आए चे ले भी दी खुश है ले भी दी शाम प्रोग्राम दरवेदा बदे ची दान तो पुशर वेदा ले बदे दान दरवेदा लाई करना बस नया नया कोई ना खबर या मुता नश्ता पता ना ना तो चाह ना दी वेली दा मैं ऐसे गाप तेर सर लगो पर इनको सारा प्रोग्राम ना दाई शो है ना मारा पारिन चिरता हुआ प्रोग्राम पर प्रोग्राम से मैं किमा संदरा लगा वाली वह संदरा है चलो रोश है जा
1: संदरा
0: खूब दिली दिलाई हुई बेटे जो खूब न दिल दिलाई बेची दस सुख तिरता हुआ शाय आगे दा खबर है वकड़ लावे छे साबा उनता भी आया नूर वजीरा विजय दास और दिन के तासलम और टोले खवातीन तासलम मीना
1: जी
0: जी
1: तो बस नहीं।

0: खुश खबरी। हुजीफा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश, खुश्की, सिकरी खत्म। मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है।
1: अगर आपके बाल गिरते नहीं, गन्ने लंबे चमकदार भी है, खारिश, खुश्की, सिकरी कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी हफ्ते में एक बार या दो बार शिफा तेल से सर की मालिश करें ताकि आपके बाल सेहतमंद रहे, क्योंकि इंसान के 90% खूबसूरती हुसन व जमाल बालों पर है।
0: हुजीफा कंपनी शिफा तेल, पिशावर, बन्नू, लक्की, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जनरल स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ शवी ददवा थोरो निशान वाला खुजीफा कंपनी शिफा तेल चेसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओसोस गंजे शवी भी याद सर विख्तान गुर्जीगी नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तेल पपल सरबा ने मालश की नो दद पसरबो दुबारा नवी विश्तान पैदाशी। शिफा तेल विश्तान गुर्जवल बंदवी विख्तान गण और उजद कवी दे सर खारश खुशकी पीना पखा हम खत्म कवी जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवले शे 0331-397-3636।
2: मनना गजल दई देवना साहब ता डलई गई यही चगाम हालात को खुजड़गाई में अंदेश ने को और मुंदी ने मखफल जून तवसवसे को वो दे टीपक ते कमर बांध खबर मा का दुला डेरे पेगलई वो बल शेरे को
3: सो जबरदस्त अब या हां
2: दे टीपक ते कमर बांध खबर मा का दुला डेरे पेगलई वो बल तशेरे को वो पकुलीना को कला कला रोगई मरगाई दुला इस पदख कली के
3: वाह सो जबरदस्त अब या हां
2: पकुलीना को कला कला रोगई मरगाई दुला इस पदख कली के शपे को वो जनुजात ये दे कली पेगले रोगले लाई मरदाई वखाई वा बलसी
3: वाह।

हवाओं को खुशबू मुबारक, फिजा को मौसम मुबारक, दिल को प्यार मुबारक और रेडियो मनी 88.4 करके तमाम गुलगुल लिसनर को इंजीनियर मसूद की तरफ से ईद उल अजहा की खुशियां बहुत बहुत मुबारक।

हवा में है खुशबू ईद की, दिलों में मोहब्बत है अपनों की और लबों पर दुआ है आप सबके लिए। मैं हूँ तारिक अजीज, तमाम सुनने वालों को बड़ी ईद की खुशियाँ, बहुत बहुत मुबारक।

रेडियो मन 88.4 खर के तमाम सुनने वालों को आज रास खेके की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बहुत बहुत मुबारक हो।

0: जी जनाब, गुल गुल हिंद बुलबुल आवाज रेडियो मनाटासी शायद सर करेक्ट है। मौत है लिखी जी अजय रास के
1: मुसाफर बची जड़
0: योजली ब्याह तो बजमत के हाजिर से प्रोग्राम से हाथ लोई ने मत सर जी गुल गुल लेस न उम्मीद रहे छोटो बड़ो तो अच्छा है छोलो था योजली ब्याह अख्तर दरिया मारे छिदा छेर छेर मुबारक शाह तो बिल्कुल दे सरा लोई अख्तर 2026 नौ आगा क्लोज शो ठीक 12 बजे बुझा बिल्कुल मैराथन ट्रांसमिशन दे रेडियो मन करक 88.4 करक है ना चेकिंग मैराथन स्पेशल ईद हवाले से प्रोग्राम ने जारी दीदा बनन दे आखिरी प्रोग्राम ईद 10 ना 12 बजे पूरे बिल्कुल नौ दे सर वो मैराथन ट्रांसमिशन सीधे आगा क्लोज शे और लोई अख्तर सीधा बिल्कुल 2026 दावा पाए तक में सर तैयार से

हवा में है खुशबू ईद की, दिलों में मोहब्बत है अपनों की और लबों पर दुआ है आप सबके लिए। मैं हूँ तारिक अजीज, तमाम सुनने वालों को बड़ी ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक।

रेडियो मनाटा से 4.4 खर के तमाम सुनने वालों को आज रास खेकी की तरफ से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो।

हाँ जी बिल्कुल, प्रोग्राम की जो आवाज है ना, ये मार्टिकता प्रोग्राम के मसरा गुल गुल एंड बुल बुल रस के वह बिल्कुल अरसी प्रोग्राम से प्रोग्राम को बिल्कुल गपशप लगी जी और नन परनु खुदा से चिकुम नाइट शो आ पैके मंगा कोशिश हो के चे ज्यूत ना ज्यूत कॉल शामिल की हो मतलब डीर मीने वालो बवील विचारा कॉल मिलाव न शो फनन मैं चला कोशिश कवी छे तो से कॉल शामिल की प्रोग्राम छे बिल्कुल कुम दा नाइट शो तो बदी के तो से कॉल चुकम दिन शला शामिल वाली कोशिश में कवी बिल्कुल तो कॉल कोली छे 0927291292 बने यानी 0927 291 292 बांधे कॉल कवलेशी।

जी सही बिल्कुल कॉल विषय मिले भी 09272912921 यानी 09272921 292. हाजी बिल्कुल दावेश मिली जी वर्ष वर्ष मैसेज जो हंस मिली जी बिल्कुल मैसेज को वाली सही 85831 बिल्कुल मैसेज तरीका दे रहा सोना लोड वर्ष मोबाइल के राइट या क्रिएट ऑप्शन दर्ज तक तो मैसेज लिखे अगर सही तब लोड शैल की बोली के गठ खरोब से आर ए के आर ए के चिकल हम बोली के बेबुवेर की स्पेस स्पेस से बाद फल नाम फल इलाके नाम ब्याह वैसेंट के पॉ 8583 बने यानी 85883 बांधे कला तो मैसेज रोशी प्रोग्राम से मैसेज जरूर से मिली जी बोले दहाबर के छे द अख्तर पहले सर स्पेशल मैराथन ट्रांसमिशन शुरू है चूंकि नन हो द जुमे वरस बने दशपे रास के चुकम दे प्रोग्राम में गजलदार हो सो चुकम दे द मैराथन ट्रांसमिशन शुरू है बाकी सबान सुम रहा बिया प्रोग्राम ना कीजिए आए मामूल मुताबिक रूटीन मुताबिक प्रोग्राम बिल्कुल कीजिए सईदा नो खजी अच्छा जी सही बिल्कुल दासी की भी छे प्रोग्राम स्टार्ट की संदरे तरफ तदरीवी रास के हम बिल्कुल प्रोग्राम की रसी नो वल दासी की भी शिवा संदरा वरुई से कंदर खटक पवा से दागा संदरा दो डेरा जबरदस्त सा बेहतरीन संदरा वेली दो खो द गनमो लाव जिक्र वगैरह समझ आया ठीक सा वो सो खैर डेरो लाको से लाओ शोय दे मतलब द चने द गनम चुकम लाओ द या शोय दे हो मे भी दासी डेरे लाकी भी चार की तरफ से पर हम मतलब दासी भी गनम पोती भी चाना पोती भी लावी नवी कड़ाई हो कचरते के लावी नवी कड़ाई नो बस हाँ द संदर और दाशी ठीक सा नो बिल्कुल दे सॉन्ग तरफ तजीज से अंदर खटक पे आवाज के दस संदरा दो डेरा जबरदस्त संदरा दो अतनी संदरा दो नो बिल्कुल बोर भी द संदरा देना बात सुगंध बिया जर सी नो बिल्कुल बोरी दस संदरा

0: हाँ जी सही बिल्कुल कॉल से मिली जी शकिलहान डोमेल निकाल कर डेरा मनाना चे प्रोग्राम से कॉल को यो जहान मनाना हाँ जी मैसेज इस हाँ डिस जानता था कि रोली दी राज भाई कॉल तरह तरसी प्रोग्राम से कॉल से मिली जी
1: बल सो को देखे हम लेना दी ओके जी नेक्स्ट कलर गोरो चे जी जनाब सोकर से खबरें कवी दी किम से नाम उरूज खटक स्टडी मास से प्रोग्राम के हर कलाई यो प्रोग्राम सर और वे
2: प्रोग्राम और
1: अच्छा प्रोग्राम और वे सही सही डेर दे वखो न खंदल बस वे ता खोंद ऐशा सही दा मिश खदा का मकसद दा जे तुसलेश के वो खोंद ऐशा चलेश की गमून टेंशन मगा मुखातम शी
2: हेलो
1: जी जी वो रू खबर दे आवाज दे रुसे अच्छा ईद मसरंगे वकड़ो
2: ईद हमारे सही
1: वकड़ा अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह पहले साल निकाल कड़े का दिन वक्त हकाल कवे
2: वक्त हम तले लकड़ी दे हो ईद के मेला दकड़ा
1: अच्छा वो ईद के दे पहले साल काल वकड़ा ला शामोज का रेडियो तो दे पहला साल काल वकड़ा ला
2: रेडियो ना
1: हाँ हाँ
2: रेडियो तो होटल वक्त न काल का
1: अच्छा रेडियो तो वक्त न काल कवे सही सही उस
2: पर लया न होटल रबीजी वो बस पर गर्मु न मैं और दल हो काल मिलने द कड़ा उसने चीज़ ना खेरी पर प्रोग्राम दा तेरे वो काल है
1: तो अच्छा लगा साइलेंट हमोश प्रोग्राम और वाय
2: हम सही घोर वकड़ा दे रही तो मिल मना रहे पहले ना
1: सही बस प्रोग्राम रेडियो मन करक प्रोग्राम ने शेदे मने लागी
2: आ दिसन ने लगी दला हम जनन से बटे तो हो टाइम देर के मती दा दूर रखे वे तो आला प्रोग्राम न और जबरदस्त प्रोग्राम न दी
1: सही यो जहान मने ना और प्रोग्राम के बसर सर शामिल होवे
2: बस तारीख भाई ने सलाम दा
0: वालेकुम अस्सलाम
2: हवा सरी तो लवरी दिन कतने
0: ना गोरा ईद ना ना खिरी वरज हो तो सिर्फ सलाम लजे
2: ईद मुबारक के हद
0: आओ करनो ईद मुबारक की सड़ाई भाई के ना खैर मुबारक तो हम मुबारक जा
2: खैर मुबारक तो लवरी दिन कतने ईद मुबारक के हद
0: सही सही
2: ओके लाफे
0: देर मना
1: ओके जी अल्लाह हाफिज निकाल कवल यो जहान मनना बंडल ऑफ थैंक्स थैंक यू सो वेरी वेरी मच
0: देर मनना कवल कवल प्रोग्राम से दे कॉल को यो जहान मनना खजी बिल्कुल अच्छा मैसेजेस हर्ड इज यो तदा की रोली दावे बिल्कुल टोल से मिले भी खलश की बिल्कुल इंतजार करवे खजी अच्छा सही सही शाह जी बिल्कुल टोल मैसेज से मिले भी बिल्कुल मैसेज कवल से 8583 मोबाइल के बलोट से राइट या करियर ऑप्शन था चर्ता के मैसेज लिखे आगे से बलोट से के बोली के गढ़ हरों से आ रहे के चिकल हम बोली के बाबा बेर के स्पेस स्पेस से बात खपल नाम अखपल इलाके ना ब्या वही चिन के पर 8583 यानी 85 83 बाने कसी जी बगल बने बल्सों को देखे हम जना दी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक दा हो जा जरूर आए बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जस पर खैर रोग ईद मुबारक शाह खैर मुबारक है जस ईद सरंग के वको अच्छा जबरदस्त जरा से पटे पटे खबर की वेली अच्छा सही सही शाह सही सही जस जरा तो हुई ना ईद चार तरफ ना दरता मिलाओ शो क्या ना
3: ना ना ना शो मिलाओ
0: वेली सही सही सही सही सही ठीक शुआ खजी जा नूर बस वेलो वाड़े प्रोग्राम के
3: प्रोग्राम दौर दा खतन दमर खफाए तम प्रोग्राम
0: या अल्लाह खैर वके गोरा दा दे गोरा काल मिलो शो मजिगार ड्राइव गोरा बिल्कुल बस गोरा दा हो पता नहीं दे चा नंबर दे दा दे गोरा काल दे और बदरो काल दे टेंस रे खा
3: तो प्रोग्राम ना और तो प्रोग्राम ना रिकॉर्डिंग का
0: हां जी
3: अमीन द मुहब्बत में दमो मशहूर और का तजमीर से कैसे
0: सही है सही है ठीक से बिल्कुल बिल्कुल इजाजत का वकी का मैं इंशाल्लाह काल बिल्कुल लगा दे शामिल जी दा दे काल दे रोए प्रोग्राम के दे शामिल से सही
3: है प्रोग्राम रा मत खला जोड़ो देता रस्ती
0: वेले वेले ला दिखे रोगी वेले जोड़े
3: मत खला जोड़ो दिए करे तो प्रोग्राम स्टार्ट से
0: हाँ जी ना ना बिल्कुल बिल्कुल जातो से माखा पकी जाए और इंशाल्लाह बिल्कुल मीज दे सराई हिस्सा हम बिल्कुल माखा पकी रहे ठीक शो नहीं तो उस तरह
3: का मेहमान मखबती हाँ जी नन में मरकरा और चलाओ इतनी
0: صحیح ده صحیح ده ٹھیک شو صحیح ده جا ډیر مننه کال کوله یو جهان بنا صحیح ده ولجا ولجا
3: شکیل اور کنه استهار ته دی فوات کنه جسین ته جان دی تو ریډیو امر کنه ته دی سلیک نو ته دی خان ته دی میډ دی ته دی دغه سیم ار دی سانو ته دغه ته دی او سلام دی ایدو مر
0: بالکل گل گل اند بلبل راس کی در سره
1: زه خو ار جی نه ازا سه ملمارو غلا یا نه زه ار جی نه مو چې ته پیژنې زه خو سره ار جی نه
0: خدی ډیر مننه سید بالکل ټول سلام دی ورسه سیدا
3: علی
0: جی جی ڈیرا منانا کال کے بولے یو جہان منانا جی بس اسٹوڈیو سے والا گاؤں

0: ओके जी, नेक्स्ट वन सेकेंड रखिए फटक। वाई कोर में दजड़ावर पसे उरान शो, कोर में दजड़ावर पसे उरान शो, पायार वादान शो दला हद तोड़ दीवालू ना वाचे वार की बड़े शाम। नेक्स्ट वन सेकेंड रखिए फटक। वाई जिस तादा हुसन सिफतू ना नूर सकड़ा। ओके जी रखी वो यो जहान मनना, थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट वही कहना दिलरुबा एंड अच्छा
1: लकबारान दजमी समप जड़रा वरे दे।
0: ओके दिलरुबा एंड महरुबा वही छे माँ कजन दा भाई और जमुंग करेश पादा भाई सांग वर्ता प्लेखा का तोरु जामो की दा नजरा नशे। ओके तपले कहूँ शाह वही कहना जिसता आदत वे बल बार करे। अच्छा वही जिसता आदत वे बल बार करे जमा दिजवन दले वनोकड़ो मड़ा भाषा माड़े शाह।